विस्मृत वेद पुराण पुकारन कोठियां नाम बिना सब कूड काली होती। नाम तो बिना मनुख सखना है, इसलिए महाराज ने नाम अमृत छानु बख्शन लई। सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत प्यार करके साडे मुख च पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द भी कमाई करेगा तेरा मन निर्मल हो जाएगा। जितनी कोई मुशक्कत टालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नूं लै जाए। इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो, ये बचन अपने पले बनांगे तो लोक परलोक सवार के जावांगे।

मैं चतन आवन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाई ना जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देख किता अपना ज्यों तिस दी वड्याई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई।

कहने वाली तेरी रहे समाई। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा किता केवड़ चीरा राऊ। सब सुरती मैल सुरत कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल बड़ियाई। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखां कियां वड्याइया। तुद वैण सिद्धि कनैना पाइया, कर्म मिलै नाहीं ठाकर आइया।

तेरी अनेक कर है हर पूजा जी, तप तप है जप बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है वो स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी, तुद जीवड़ अवरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई। तुद आपे पाव है सोई वरतै जी, तू आपे करह सोई। तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सजार मैडा साई, जो तुम पावे सोई थीसी। जो तू दे सोई हम पाई राव। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल, वजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या

എല്ലാം ചേത്തസർവരുടെ പൈലിനവാസാണി പാകുതനഹിയാൽ പങ്കജമോ പകനഹി ചാല ഹമ ദേഖാതൂബി അറേ മന ഏക നചേതസ് മൂഢ മനാ ഹർ ബിസരത തേരേ ഗുണ ഗലയാ രാവ് ना हो जति सति नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक जन की शरणा जन तू नाही विसरया आस्था महला पंजवा पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया अवर काज तेरा कित न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजा मिलाग पवजल तरन कह जन्म मृथा जात रंग माया कह राव जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष्ट सब तुम काव आप हाथ दे मोहे बचाव सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सब कर तारा मोह रक्षा निज कर दे करे आए सब बैरन को आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहो सुदम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे बरे आए मरण काल का त्रास निवरे आए हू जो सदा हमारे पछा श्री अस्तुजू करे हो रक्षा

भाई प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए सब जीव अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जबन काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जबन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताई हमारा जबन काल सब जगत बनायो देव दैंत जशन उपजायो आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबद कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के बट बट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा थरत तब दे अपारा जब या करख कर तो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप अपनी बूझ चारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरे आलम

कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पैव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पैन पैन तो है तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पज खान बहोर रच दीनी। कहूं भूल राजा अब बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभार या सिख संग्रो। दोष जिते उठ बतो तो पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुगत वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट न आए हैं। रक्षा होई ताए सब काला, दुष्ट रेष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहिन हरे हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास्व सके न कोई। एक बार जिन तुम संभारा, काल फास ते ताही उबारा। जैन नार नाम तिहार कहा, दारिद दोष्ट दोगते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दल उबारी।

नहीं आने आऊं। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने आऊं। सिमरत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जाने आऊं। सरी असबान कृपा तुमरी कार्यो मैं न कहूं सब तो बखाने आऊं। दोहरा

सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन भजियां बधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द तां गावो हरी के राग मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

कर कृपा पाखण हम तारी सतनाम श्री वाहिगुरु जी तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चल गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली

हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवह बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बंद, मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए, हर मिलया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लचानी, हर कृपा कर बन वाली। जन नानक संगत साध हर मिल, हम साध जन पगराली। हर हर जपन जप लोच लचानी, हर कृपा कर बन वाली। जन नानक संगत साध हर मिल, हम साध जना पगराली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ओ सोहेला रागौड़ जी की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ता की है, करते का हो विचार। चित कर गावो सोहेला, सिवरे सृजनहार। तुम गाव हो मेरे निरपौ का सोहेला, हो वारी जित सोहेला सदा सुख हो राहो। नित नित जीअड़े समालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दान कीमत ना पवै, तिसदा ते कवन समार। संबत सहा लिखया मिलकर पावो तेल, देह सजन असी सड़िया जो हो वै साहब सुमेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नत पवन, सदन हार सिमरिय नानक असे दे अवन। राग आस्था महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको इस अनेक। बाबा जय कर करते तीर्थ हो, सो कर राख बढ़ाई तो राओ। विश्व जसिया कड़िया पहरा, थिति वारी माह हुआ। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। राग तनासरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बाणी, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चबरू करे, सगल बन राई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द बाज अंत पेरी राओ। सहस तब नैन नान नैन है तोहे काओ, सहस मूर्त नना एक तोही। सहस पद बिमल नान एक पद गंध देन, सहस तब गंध अब चलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिसद चानण सब मैं चानण होई। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मन, आनंद न मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिंग का, होए जाते तेरे नाहि वासा। रह गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर व भरिया, मिल साधु खंडल खंडाही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लेव मंडल मंडाही। कर साधु अंजलि पुन वडाही, कर डंडाओत पुन वडाही राओ। साकत हर रसाद न जानिया, तिन अंतर हम मैं कंडाही। ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पाव है, जमकाल सह है सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमाने, दुख जन मरण पव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बट वडाही। जन नानक नाम दार टेक है, हर नाम में ही सुख मंडाही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। तीहा खाट चलो हरला, आगे बसन सुहेला। औद कट दिन सरह नारी, मान गुरमिल का सवारी राव। हे संसार विकार संसे मैं तरु ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पिया वे रासु अकथ कथा तिन जानी। जा को आए सोई बिहाज हो, हर गुर ते मने बसेरा। निज कर मैल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास यह सुख मांगे, मोह कौकार संतन की तूरे।
अंतरयामी पुरख बिदाते।

0: केवू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: समर्था है। पहली गल, सिमरन तो जिन्ना भी साढ़े को समर्था है ना वो करना ही करना है, पर नाल ये है आप गवाई है ता सह पाई है, अपना आपा भी गवाना पेगा। एक होर विचारधारा बिल्कुल नाल है, जिन को नजर करम तिन कार नानक, और बख्शिश नू भी नाल ही रखना है। साडे अंदरों ये आवाज आनी चाहिए है, जीवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्ही लही है। सानू भी यह कहना पेगा, लाख जेवा दे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे मैं लखा जेवा दे, मुक हर अराधे मेरा राम, ताकि मैं तेरा सिमरन कर सका, भाव मेरी समर्था वधा। एका जी कीचे लख बीस, सानू अरदास करनी पेगी, भाव मेरी समर्था वधा। एक जीव दिती, आप तुसी इतने बेअंत हो मैं नहीं बयान कर सकता, चाह मैं इन्ना कि मैं ज्यादा जपा, इस करके एका जी लख बीस जप हर हर शब्द जपीस। यह भावना है, समर्पण की भावना है, तांग है, प्यार है, पर जे केवल केवल विखावा है तो सतगुरु यह भी कहें गली असी चंगिया आचारी बुरिया, मनोकुशुदा तालिया, मन तो कुशुद हाँ असी, ताले हाँ बाहर चिकलियां। फिर यह तो उस तरह डुबण वाली गल है, यह तो उस तरह हंसा देख तरंदियां बगा आया चाहो वो तो तरदे पे ने, उन्हों की उचारी से उठी बस उन्हें चाह ही पैदा हो गया, चलो कि बड़ा सौखा जहा काम है। एक शौक ही है, अंदरों तड़प नहीं पैदा हुई, नतीजा की निकलिया, डुब मोए बग बकुड़े सिर तल उपर पाओ। बस यही विचार तरह दर करवाई जा रही है, बहुत कीमती पौड़ी है, सिमरन करना चाहिए है, किवें करना चाहिए है, अकाल पुरख वाहिगुरु की बख्शिश साढ़े उत्ते हो जाए, ऐसे कर्म करने चाहिए ने। यह तिने गल् इकट्ठिया जो हो फिर सानू कुछ प्राप्ति जी है हो सकती
1: है। सत्संगत सारी विचार का हम निचोड़ भी तुहानू लभ जाना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दो अक्षर आते हैं, एक है गुरमुख एक है मनमुख। मन के पिछे तुरन वाला मनमुख, गुरु के आखे लगन वाला गुरमुख। मैं पूछा गुरु नानक देव पातशाह जी ने जदों सिद्धा ने सवाल किया भी गुरमुख के की लक्षण, तो गुरु पातशाह ने जवाब देंदे कहा

ताँ करता भरपूर समाही सूके ते फुन हरिया की तन हर त्यावो हो चोज वडाणी है जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हों कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती।

हर जपी है पद निर्वाणी है। ना कर चिंत चिंता है करते, हर देव जल थल जनता सब तै। अचिंत दान दे प्रभ मेरा, विच पाथर कीट पखानी है। ना कर आस मीत सुत पाई, ना कर आस किसे सा व्यवहार की पराई। बिन हर नावे को बेली नाही, हर जपिए सारंग पानी है। अन दिन नाम जप हो बनवारी, सब आसा मनसा पूरै थारी। जन नानक नाम जप हो भव खंडन, सुख सहजे रैन विहानी है। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी है। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भव भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह विच पानी है।

दान तुझे पै करती हर अन दिन नाम बखानी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का मैं हर दिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान कर तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे जिनका पाख करह तू स्वामी तिनकी ऊपर गल तू दयानी है। हर हर नाम जिन्नी सदा त्याया तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन हर सेवया तिन सुख पाया बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मह वरत है हर जगन्नाथ सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ हर की सरन पया हर जापी जन नानक दास दसानी है। मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कला उपाय तरी जिन धरना गगन रहाया हुक्मे चरना अगन उपाय ईंधन मह बांदी सो प्रव राख पाई है। जी जंत को रिजक संबाही कर्म कारण समर्थ अपाही खिन मह थाप यथापन हारा सोई तेरा सहाई है। मात गर्भ में जिन प्रित पालिया सास ग्रास होए संग संभालिया सदा सदा जपिया सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब नवाज करे प्रभ मीरे गर्भ निवारण सर्ब सुधारन किस कीमत कही ना जाई है। सो पतवंता सो तनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता मात पिता सुत बंद पपाई जिन एह सृष्ट उपाई है। प्रभ आए सरना पहो नहीं करना साध संगत निश्चो है तरना मन बच कर्म अरादी करता तिस ना ही कदे सजाई है। गुण निदान मन तन मह रविया जन्म मरण की जून ना पविया।

तान तनंतर अंतर जामी सिमर सिमर पूर्ण परमेश्वर चिंता गणत मटाई है हर का नाम कोट लख बाहा हर जस कीर्तन संग धनताहा ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई है हर का जाप जप हो जप जपने जीत आव हो वस्त हो घर अपने लख चौरासी नरक ना देखो रसक रसक गुण गाई है खंड ब्रह्मांड उधार नहारा ऊच अथाह अगम अपारा जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी सो जन च सह त्याई है बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले कर कृपा कीने कर गोले अनहद रुण चुन कार सहज धुन साची कार कमाई है मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग मह सोभ सुहाई है जय जयकार जपो जगदीसै बल बल जाई प्रभ अपने ईसै जिस बिन दूजा अवर न दिसै एका जगत सबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मन राता।

तबे उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग बलासाही जो पिर करे तो तन तत मान पिर तन है श्रृंगार रखे संगान मिल एकत्र वस है दिन राती प्रियो दे तन है दलासाही धन मांगे प्रियो बहु बिदतावे जो पावे सो आन दिखावे एक वस्त को पहुँच न सके तन रहती भूख प्यासाही तन करे बिनो दो कर जोरे प्रिय प्रदेश न जाहो वसुहो कर मोरे ऐसा वणज करहु ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासाही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासाही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारचन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हो कित ही ना लिख वचन दे छोड़ ना जासाही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ पारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदासाही जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कछु न समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासाही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊट सदायो शूतर माटी देख नानक मिथन मुहासाही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए ताकत नगुरे गल जम फासाही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासाही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासाही हों बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विछड़ना कत ही जासाही गुण निधान किस कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक शरण दीन दुख भंजन हों रेण तेरे जो दासाही मारू सोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा है हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर देख दिगस आपे ही आप पूजा है आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खिलावे दिन राती आपे सुन सुन पी जाहि साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच धारियो सब साचा सच्ची सच वरती जाहि सच तपाव सस

सहज घर तेरे हमें तेरी दृष्टि जाहे तेरी दात तुझे ते होवे देह दान सबसे जंत लोवे टूट न आवे पूर पंडारे तृप्त रहे आगी जाहे जाच है सिद्ध साधक बनवासी जाच है जति पति सुखवासी एक दातार सगल है जाचिक देह दान सृष्टि जाहि करह भगत अर रंग अपारा खिन मैं थापयो थापन हारा भारू तोल बेअंत स्वामी हुक्म मन भगती जाहि जिस देह दर्श सोई तुद जाने ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने चतुर स्वरूप सियाणा सोई जो मन तेरे पावी जाहि जिस चीत आवह सो वे परवाह जिस चीत आवह सो साचा साहा जिस चीत आवह तिस पहु केहा हवर कहां किस की जाहि तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरे लै तूटा गंडा सुरत शब्द हृदय अंतर जागी अमयो चोल चोल पी जाहि मरै नाही सद सद ही जीवै अमर भयाब नासी थीवै ना को आवै ना को जावै गुरदूर किया परमी जाहि पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी चढ़ै सवाया नित नित रंगा कटै नाही तोली जाहि बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया परख खजाना पाया सराफी फिर नाही ताई जाई अमृत नाम तुम्हारा स्वामी नानक दास सदा कुर्बानी संत संग महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले।

कर्म गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फस्त है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुरुद्वार हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भनिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यान नाही। गुर मिले है सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले है नह जो है माई। सत

सब एको है पालना। डर चूके बिन से अंधियारे प्रगट पए प्रभ पुरख नरारे। आप छोड़ पए सरनाई जिसका साथ इस कालना। ऐसा कोवड भागी आया आठ पहर जिन कसम ते आया। तिस जन कै संग तरे सब कोई सो परवार सधारना। एह बख्शीस कसम ते पावा आठ पैर कर जोड़ ते आवा। नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना। मारू महला पंजवा सूरत देख ना भूल गवारा। मिथन मोहारा झूठ फसारा।

भोग सब भर्म मिटाई, एको मंत्र दरड़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसह बहु देवा, सगल भगत जाकी कर दे सेवा। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पायना। होर द्वारा कोई ना सूझै, त्रे पवन तावै ता किशु ना बूझै। सतगुर साह भंडार नाम जिस, एह रतन तिसै ते पायना। जाकी तूर करे पुनीता, सुर नर देव ना पावै मीता। सत पुरख सत गुर परमेश्वर, जिस भेत तपार परायना। पार जात लोड़ह मन प्यारे, काम तेन सोही दरबारे। त्रिपत संतोख सेवा गुरपूरे, नाम कमाए रसायना। गुर कै शब्द मरह पंच धातु, तै पार ब्रह्म होवह निर्मलातु। पारस जब भेटै गुरपूरा, ता पारस परस दिखायना। कई बैकुंठ नाही लवै लागे, मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे। एक अंकार सतगुर ते पाई है, हों बाल बाल

सो सेवक जिस वड भाग मथाएना गुर की महिमा वेद ना जान है तो शमात सुन सुन वाखाण है पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लाएना जाकी सोए सुनी मन जीव है हृदय वसै ता ठंडा थीव गुरमुखो अलाए ता शोभा पाई तिस जम कह पंथ ना पाएना संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण धन आगै तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया किरमाएना निर्गुण को संग लेहो रलाए कर कृपा मोहे टहले लाए पक्का फिरो पीसो संत आगे चरण धोए सुख पाएना बहुत द्वारे भ्रम भ्रम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संत है संग राखो एहो नाम दान देवाएना भये कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया

गुरबाणी कहे सेवक जन मन पर तख गुरु निश्चित एक ओंकार सतगुरु तय प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतह विघ्न बनाशन सो तुद आ गए अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड़ियाई आई

रंगवर सोदार केहा सो कर केहा जितव सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा उकेते वावण हारी केते राग परिसों कही अन अंकेते गावण हारी गावे तो न पौन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारी गावे हैं चेत गोद लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे हैं इंद्र दासन बैठे देवते अंदर नाले गावे हैं सद समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जग जग विद्या नाले गावे हैं मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रत्न पाए तेरे आठसठ तीर्थ नाले गावे हैं जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे सही तुदन गावे हैं जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर करू जिन सी माया जिन हो पाई कर कर वेखै कीता अपना जब तसदी वड्याई जो तस पावै सोई करसी हो फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद झोली ध्यान की करें बेपूत गिंथा काल कुआरी काया जोगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश तस आदेश आद नील नाद नात जुग जुग एक होवेश भुगत ज्ञान दया भंडारण गड़गड़ वाज नाद आप नाथ नाथी सब जय की रद सिद्ध अबरा साध संजोग बजोग कार चलावै लिखे आवै भाग आदेश तस आदेश आद नील नाद नात जुग जुग एक होवेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण ओ वेखै ओ न नजर न आवै बहुता ए बिडाण आदेश तिस आदेश आद नील अनाद अनाथ जुग जुग एक होवेश आसन दोई लोय भंडार जो किछ पास एका वार कर कर वेखै सरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिस आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एक होवेश एक दूजी पौ लख हो है लख हो है लख वीस लख लख गेड़ा आखियां है एक नाम जगदीश ए तराहा पत पपड़ियां चढ़िया हुई अकीस सुन गलां आकाश की गीटां आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखण जोर जपैन है जोर जोर न मंगण देण न जोर जोर न जीवन मरण न जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नहीं जना कोए राति रुति थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस वज धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग दिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होई विचार सचा आप सचा दरबार तिथै सोहन पंच प्रवाण नदरी कर्म पवै निशान गच बकाई उथै पाए नानक गया जप जाए धर्म खंड कायो धर्म ज्ञान खंड का खो कर्म गेते पवन पाणी बसंतर गेते गान महेश गेते ब्रह्मे काढ़त कड़ी है रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर गेते केते तू उपदेश गेते अंध चंद सूर गेते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदानु मन केते रतन संबंध केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरेंद केतियां सुरती सेव केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड जिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप जिथै काढ़त कड़ी है बहुत अनूप ता कियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहे पिछे पछताए जिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध जिथै घड़ी है सुरस दं की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जूद महाबल सूर तिन मैं राम रहया भरपूर।
ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਦਾਗੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੀ ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਈ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਾਂਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਤੀਰ ਜਸਨਿਆਰ ਹਰਣ ਮਤ ਵੀਰ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖਲਾ ਗਣ ਤਪਤਾਉ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਤ ਟਾਲ ਘੜੀ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਦਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹ ਨਰ ਬਰਨ ਜਾ ਤਿਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਦੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋ ਜਿ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਨਿਰਾਣ ਸਾ ਸ਼ਾਨ ਗਣੇ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਣ ਮਹੀ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤਿਰਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਜਾਏ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਢਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸ਼ੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਧਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਿਕਾਇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕਾਇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਾਸਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਾਸਰ ਜਬੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਾ ਸਦੇਵ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਤੰਦੇ ਨਮੋ ਵਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਜਾਚਰੀ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂਹੈ ਪੂਹੈ ਲੇਖਾ ਪੇਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਆਦਿ ਹੈ ਪਿਆ ਜੀਤਾ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤਰਮਾਨ ਨਿਧਾਨ ਤਿਰਵਰਗਾ ਸਰਗਾਏ
अनिल है अनाद है अजय आजाद है जन्म भरण है बुद्ध है भरण है गांज है बांझा चूज है चांझ है मी कर फीक है तंद है बंद है निर्भूज है सूज है काल है जाल है अल्लाह है जा है अनंत है महंत है अली का इंद्र श्री का इंद्र लंब है सम है गम है जम है भूत है सूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है भाग है मानन दान नीक है फिर एक है भुजंग प्रयाद छंद नमो सर्व मान्य समाज दिन दाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान दाने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे ब्रपंगी परमाथे समाधि विभूते कलंकंग बिना ने कलंगी स्वरूपे नमो राजराजेश्वरंग परम रूपे नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरंग परम हृदय नमो शास्त्र बाणे नमो अस्त्र बाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता बेखिय परमीय भोगिय भुगते नमो योग योगेश्वरंग परम जोगते नमो नित नारायणे गुरुर कर्मे नमो प्रेता प्रेत देवेशो धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाशाहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी सदा सचदानंद सर्वंग प्रणासी अनुपे रूपे समाज तुलवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध करता अदु उर्दर्दंग गंगो घरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समाज तुभराजी समाज दासदामंग तेरा जोर चाचरी शंभ जले हैं थले हैं पीता भे हैं प्रभु आजुआ दे सब बेस है इंपजंग पर आदि शंब अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज दिन धान्य नमाज तुम नरनाथी नमाज तुम परमाथी नमाज तुम गंजे नमाज तुम पंजे नमाज तुम काले नमाज तुम पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व बेसे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाहे नमो मह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व प्रीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व कलेशंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समाज तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धिंग निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल भोगे जल राजे अटल साजे खल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले सर्वं पाले रूआल शांत दव प्रसाद आद रूपनाद मूर्देवन ब्रख पार सर्व मंत्र मान देव बेवाद उदारु सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन कालु जत्र तत्र विराजी अवधूत रूप प्रसाद नाम ठावना जाद जा करु ब्रंग न रेख आद पुरख दार मूर्त अजुना देख देश और न पेश जा करु ब्रग न राग जत्र तत्र दिश विशा विफल अनुराग नाम कामहीन बेखद दाम हूं न जाहि सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहि एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल न अंत को ब्रेक देव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पास जानी कह जेव तात माद न जात जा कर जन मरण महीन जकर बकर फिर चदर जाक मानी प्रतीन लोक चौदां के विखय जग जा पी जय जाप आद देव नाद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप विनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व विश्व रचियो स्वयं पव कर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त कल पुरख देश धर्मधाम सु परम रहत भूतल कपेश अंग राग न रंग जा कै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपा मी गान असत एक पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व दयान पेख सर्व शास्त्र न जानी जय रूप रंग अर देख
ਪਰਮ ਵੇਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾ ਕਹੇ ਨਿਤ ਪਾਖਤ ਨਿਤ ਗੋਡ ਸਿਮਰਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨ ਆਵਈ ਬਹੁ ਚਿਤ ਮਦ ਪਾਰ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਣਗਾਨ ਉਧਾਰ ਮਹਿਮਾ ਪਾਰ ਆਸਨ ਪੰਗ ਉਪਮਾਨ ਅੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਸਜਨ ਅਨਾਸ ਆਜਨ ਵਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਜਨ ਰਾਜਪਾਨ ਅਨਪਾਨ ਦੀਵਨ ਦੀਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰਾਨ ਇੰਦਰ ਬਾਲਨ ਬਾਲ ਰੰਕਾਨ ਰੰਗ ਕਾਲਨ ਕਾਲ ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ ਆਪਾ ਪੰਗ ਗਟਮਿਤ ਪਾਰ ਗੁਣਗਾਨ ਉਧਾਰ ਮੁਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਿਰਭੈਨ ਕਾਮ ਆਤ ਦੁੱਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਮਿਤ ਗਤ ਅਖੰਡ ਅਲਿਸੈ ਕਰਮ ਅਦ੍ਰਿਸੈ ਧਰਮ ਸਰਬਾ ਪ੍ਰਣਾਡਿਆ ਆਣ ਰੰਡ ਵਾਡਿਆ ਚਾਚਰੀ ਸੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਖੰਦੇ ਉਦਾਰੀ ਅਪਾਰੇ ਹਰਿਅੰ ਕਰਿਅੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਕਾਮੇ ਭਜੰਗ ਪ੍ਰਜਾਤ ਛੰਦ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਕਰਦਾ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਹਰਦਾ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਜਾਨੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਲੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਕਾਲੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਪਾਸੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਾਸੇ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਮਾਨੇ ਆਏ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਦਾਨੇ ਆਏ ਜਾਜਰੀ ਛੰਦ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਪਰਮੰਗ ਨਾ ਪਿਤਰੈ ਨਾ ਕਰਮੰਗ ਨਾ ਕਾਹੀ ਜਨਮੰਗ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਚਿਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਭਰੇ ਅੰਬ ਪਿਤਰੈ ਪ੍ਰਦੀਸਾ ਦੇਸਾ ਦ੍ਰਿਸਾ ਕ੍ਰਿਸੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਸ ਦੇ ਕਿਆ ਸਚ ਦੇਸੈ ਕਿਆ ਬਿਜ ਬੇਸੈ ਕਿਆ ਗੰਜ ਕਰਮੈ ਕਿਆ ਪੰਜ ਪਰਮੈ ਕਿਆ ਬਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿਆ ਦੁਧ ਸੋਕੈ ਕਿਆ ਬਦੂਤ ਵਰਨੈ ਕਿਵੇਂ ਭੂਤ ਕਰਨੈ ਕਿ ਰਾਜੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹੈਂ ਕਿ ਧਰਮੰਗ ਤੁਜਾਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਣੈ ਕਿ ਸਰਬਾ ਵਰਣੈ ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਗ ਸ਼ਤਰੀਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਪਾ ਅਨੂਪ ਹੈ ਕਿ ਆਦ ਅਦੇਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬੇਵ ਹੈ ਕਿ ਜਤਰੰਗ ਵਿਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧੀਨਾ ਕਿ ਰੋਜ ਰਜਾ ਕਰ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਾ ਗਾਇ ਕਿ ਪਾਕ ਵਿਆਬ ਹੈ ਕਿ ਗੈਬ ਲਗੈਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬੁਲ ਗਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੇ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦਾਨੇ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਗਾਉਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਉਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਬੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਲ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਲ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੀਨਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਲੀਨਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਜਾਹੋ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਹੁ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਬੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਲ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਲ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦਰਾਣੇ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਥਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਵੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮੰ ਭੀਮੈ ਕੇ ਆਕਲ ਲਾਮੈ ਕੇ ਸਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਜੂੰ ਤਮਾਮ ਦਰਜੂ ਹੈ ਮੇਸੋ ਸਲਾਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮਦਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਲ ਸਕਸਤਾ ਗਰੀਬਲ ਪਰਸਤਾ ਹੈ ਬਲਿੰਦਰ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨ ਵਾਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀ ਜਲ ਤਮਾਮੈ ਰੁਜੂ ਵਾਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀ ਫਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਗ ਜਗੀਨੈ ਅਨੇਕਲ ਤਰੰਗ ਭੇਦੈ ਪਾਂਗੈ ਅਜੀ ਜਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਨਿਵਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਤ੍ਰ ਮੁਕਤ ਬਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਾਸਤ ਉਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬਸਾਜ ਹੈ ਸਮਾਸਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵ ਲਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗਾਦ ਅਨੂਪ ਹੈ ਵੰਗਾਦ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਫਿਰ ਵਰਗਮ ਦਰਵਾਦੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰਗ ਸਰਭਾਗੇ ਸੁਸਰਭਾ ਨਰਾਗੇ ਦਰਭਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਜੈ ਸੁਦੈ ਕਿਨਰਗੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭਗ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਵਿਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪ੍ਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਪੰਗ ਹੈ ਨੰਗ ਹੈ ਬੇਖ ਲੇਖ ਹੈ ਪਰਮਾ ਕਰਮ ਨਾਦ ਗਾਦਾ ਜੈ ਬੈ ਬੂਧਾ ਦੂਧਾ ਨਾ ਸਬਦਾ ਸਬਦੰਦ ਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਬਿਰਗਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਅਸਨੰਤ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਹੈ ਢਾਗ ਹੈ ਸੰਭਵ ਕਮ ਹੈ ਨੀਲਾ ਨਾਦ ਹੈ ਨਿਤ ਅਸਨਤ ਜਾਤ ਜਾਤ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ
सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शांत प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे नंगं स्वरूपे भंगं भूते परमाथं परमाथे सदा सदा सर्वसाधे। अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते नंगी नामे दर्भंगी दर्गामे इंद्रभक्त नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्राय न तात न मात न जात न पात नृसाक श्री गमितमी गह सदैव प्रवाह जय जाय भगवती शांत प्रसाद। किजारजूर है कि हाजर हजूर है मे सो सलाम है समा सुल कलाम है कि सब दुमाग है कि उस नल चराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी दहंद है कि राज कर हंद है करीमल कमाल है कि उस नल जमाल है करीमल खराज है करीबल नवाज है हरीफल सकन है रासलब कन है कलंक प्रनास है समाल तुल निवास है गंजल करीम है रजाय करीम है समाल तुल जवा है कि साहब कराए कि नरक प्रनास है बह तुल निवास है के सर्वलगवान है मे सुलरवान है तमामुल तमीज है समाज तल जीज है परम परमीश है समाज तल दीस है दीसल लेख है मे सुल पेख है जमीन उल जमा है मी कुल मा है ग्रीमुल कमाल है गजरो जमाल है गजरंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है गज विस्वरूप है कि मितो भूत है कि मितो बसा है कि आत्म प्रभा है कि जलंग रंग है कि मितो भंग है मद पार छंद तल प्रसाद। मुन मन प्रणाम गुण गण मदाम हर भरिया गांजू हर नर पर पांजू गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नरिया खांडू भर नरिया मंड अन पव नाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जंग आसन अपंग उपमा पार गात में त्योदार जल थल मांडो देश विश पांडु जल थल महंत देश विश बेअंत अन पव नाश द्रत दर दराश राजन बाह एक सदा अंकारयाद कथनीय नाद कलखंड ख्याल गुरु भर काल कर कर प्रणाम जज जन नाम अंश जिगात जिजनवाद अन जंज गात अनरंज बात अंटुट भंडार अंठट बार अठीठ धर्म अतठीठ कर्म अणप्रणनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तब प्रसाद। करुणालय है अरकालय है कलखंडन है मह मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रद के तरण है जग के कारण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वंकर है सर्वास है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड स है कलखंड स है परते पर है करुणाकर है जप जप है सप सप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है तरणी धृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है खल गायक है विश्वंबर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भवपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरदार है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयाद शंभ नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो दे तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम दत्तंग दत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कल कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रे नादिंग भूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो आशासे नमो भांग भांगे भंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शंभ अजय अलय पय वय पूव जू नाथ गाध गंज बंज लख पख गाल्या लेख बेघ नाम काम काम नाम काम घाटा नाथ परमाथे जोनी मोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे करमंग वरमंग गंज अलेखे भुजंग प्रयाद शंभ। नमाज तुल प्रणामे समाज तुल प्रणासी गंजलो नामे समाज तुल निवास नृगामंग बभूते समाज तुल स्वरूपे गो कर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी गरी मुलक निंदा समाज तुल निवासी जैव बभूते जैव गनीमे हरियंग करियंग करीम रहीमे
चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुयम पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुखालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंग भूते चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते सुयम पव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुखालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंग भूते सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ ताव प्रसाद सवैये ओंकार सतगुरु प्रसाद ताव प्रसाद सवैये पातशाही दसवें श्राव सुध समूह सुधान के देख पर कर जो जति के सूर सुरार्दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश का देख रहे हो मात गौन देखित प्राण पति के सरी भगवान के भाई कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जर यर संग अनूप तंग सुरंग सवारी गोड़ तुरंग कुरंग से गुड़ दे बौन के गौन को जात निवारी पारी पजान के भू बलि पद न्याव शीस न जात विचारी ते पाए तो काम पै भूप अंत नंग पाए पदारी जीत फिर सब देश दिशान को बाजत टहोल मृदंग नगारी गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है अजराज हजारी भूत भविख भगवान के भूपद कौन कने नहीं याद विचारी सरी पसरी भगवान भजे बने अंत को अंत के धाम सुधारी तीरथ नान दान सुधनव नेब अनेक सिख है वेद पुराण के देव कुरान जमीन जवान सुवान के बिख है पौन आहार जदियाधार सब सुजार हजार के लिखा है सरी भगवान भजे बने भूपद एक रि बने एक लिखा है शब्द सुबाद रंत सुहासना दुर्जान लेंगे भारी गमन मान परे मन कर पर्वत कर लेंगे तौर हरी मरोर वासने माध्यम नंगन मार मरएंगे श्री वासरी भगवान कृपा त्याग जहान दान चलेंगे वीर अपार बटे बरे हार बचारे सार की धार बछैया तौर तदेश मलंदम वासन माध्यम जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सुबात नहीं जग चार लवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव नंदन साचर अभूत भविख भगवान जपेंगे जीवित जल में सल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिराए जग सदर सब अवलोक जपेंगे मानव इंद्र चंद्र नराध भजोंतर लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंबर साध भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सदी पाद अंत पद जम पाद भरेंगे जे नार श्री पद के परसे पाग दे नर फिर न दे तरेंगे कहाँ पाओ जो दो लो जन मूंद कह बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नहात फिर लिये सात मुद्रन लोग उपर लोग गवायो बास की उपख्यान तो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सुबह सुधायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पान पूज धरे सर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखे हर वाची दिशा में काहू पछा को सी सुनवायो को बुदान को पूजत है पास

मंत्री जो उत्तम अपराधा गीता है संपूर्ण सूर्याशा की दीवार का कीर्तन छह महीने चमत है अमृत वेगा सच नाम बढ़ियाई विचार कभी आवे कपड़ा नगरी मोर सुहावा बालक के पावन चरणों की जुड़ आपने लगभग दो घंटे सत्य की पूर्ण वाणी धाम पर श्रवण किया है।

दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मोरे चीत कॉन्फिडेंट एंड अंडर द डिल्यूजन ऑफ माया द थॉट ऑफ डेथ एंड देयर आफ्टर नेवर एंटर्स हिज माइंड एंड प्रेशियस लाइफ इज वेस्टेड अवे.

मन मेरे तिन की ओट ले, ओ माय सोल सीक द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु हैव नोन द ट्रू लॉर्ड, सरेंडर योर हार्ट बॉडी एंड सोल टू देम, द मैन हु रिकॉग्नाइजेस हिज लॉर्ड, दैट मैन इज द गिवर ऑफ ऑल थिंग्स.

अवर से आनप सदली छाद पिस्टन की तू सेवा नाग लीव ऑल अदर क्लेवनेस एंड अटैच योरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ सच अ पर्सन.

कीर्तन भाई साहब योगेंद्र सिंह जी रियाड़ बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने पढ़िया है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु ने मैनू नाम रूपी मिठा गुड़ दिता है जिस करके ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बने आई। आओ सारे प्यार नाल सरवण करो बीबी जी।

0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: मेरिया भैनों की जकारे की बख्शिश कर, कोई भैन उसके जकारा छी। और प्रिय गुरु

तन जीवन दुर्ब्रह्म थोड़ा सा वो पीर मेरे मन तन दर्द में चोट लगी छोड़ेगा देख मतलब थोड़े का एहसास मिलने की कारण उस अवस्था में आपके हैं अंदर चंगे मेरे अंदर से दर्द उठता पीड़ होगी मेरे मन संवेदन दुर्गन होगा नींद नहीं आती उस मुद्दे के बगैर मिलाप हो जाए चैन आए जब तक मिलाप नहीं होंगे तब तक चैन नहीं आता वो जो विछोड़ेगा वो एहसास है मिलन की तांग है वो अवस्था जुड़ी है वो पीड़ बननी है दर्द बननी है और उसके मिलाप के बिना चैन नहीं सुख नहीं नींद नहीं से नहीं सुख नहीं लेकिन जल्दी थी मतलब चैन जरा अपने अंदर चाकी मार के देखिए कि छोड़े का एहसास है कि मिलने की तांग है आओ गिरफ्तार करें।

आओ एक बार इन्हों पंक्तियों में सारे मिलके गाइए। भाई साहब को बेनती है, सारे संत चौकड़े मारो हाथ जोड़ के, प्यारे हो ये बड़ी दात है, दाते नू मांग लेना। मिल मेरे प्रीतमा जीओ तुद बिन खरी नमाणी, कोई रसना बाजी ना रहे, सारे मिलके ना पंक्तियों रसना से लियाइए।

तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा, आप भागा वाले हो बैकुंठ धाम का रस मानण वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बराजे हो। जिहड़ियां संगतां सतगुरां दे दरबार तों इधर उधर बाहर खलोतियां ने, सारियां संगतां दे चरणां विच निमर बेनती है, गुरु साहिब जी दे सत्कार नूं मुख रखदिआं होइआं प्यारिओ आओ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी विच आ जाओ। सारियां संगतां नूं दुबारा फिर बेनती है, आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब मनाउण वास्ते आए हाँ। बहुत सारियां संगतां सतगुरां दी हजूरी तों बाहर इधर उधर खलोतियां ने, हजूरी विच आ जाओ। बाहर दीवार ते भी संगतां बैठियां ने, भी जिहड़े भुंजे नहीं बैठ सकते वह तो जरूर उत्थे बैठन, जिहड़े बैठ सकते ने मेरियां भैणां वीर वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के सत्कार नूं मुख रखदिआं होइआं आप जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद विच चौंकड़े मार के शरदा ते प्यार नाल बैठो। अज दा आत्मरत कीर्तन दरबार आरंभ होण लगा है, जिस विच भाई रविंदर सिंह दी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब, भाई हरजिंदर सिंह दी श्रीनगर वाले, भाई नरंजन सिंह दी जवद्दी कलां वाले।

गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखत मुख देवे काटे जमकी खंदा। मेरा वैद मेरा गुरु है भी दवाई केड़ी देंदा है नाम दी। एहो जी नाम दी दवाई मेरे हिरदे चोली विच पांदा है। दुनिया दे दुख ते कलेश एक पासे जमदूत भी दरवाजे दे अगे नहीं लगता है। नाम नारायण मेरे जमदूत ना बहने आओ। भाई रविंदर सिंह जी अगला शब्द आप जी ने सरपण करा रहे हैं। एकाग्र चित होकर सुनो।

ऐ गुरु ग्रंथ से महाराज, कदे भी वो दिन ना आवे जिदन तुहाडे दर्शन ना हो। तेरी बाणी सुन सुन के पढ़ पढ़ के जीवां, नित उठ गावो प्रभ की बाणी। प्यारियो, मन विथियां जोड़ो, कीर्तन विच मन जुड़ जाए, गुरु नानक दी गोद दा रस मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी एक एक बाणी दा एक एक अखर सतगुरां ने अपने हिरदे ते शरीर ते कटाया है, तां साडी चोली पाया है। आनंदपुर साहिब दी पावन धरती, अद्धी रात दा समां, आनंदमयी आनंदपुर दी धरती रात नूं छड़नी पै गई, सारा कुछ लै के मेरे कलगी तरदाता जी तुरे जा रहे ने। ते जदों आया सरसा नदी दा किनारा, अज पानी भी अगे नालों बधेरा चढ़िया पिया है। पार करन लगे ने कीमती कीमती समान, पानी रोड़ के लै गया है। मां बिछड़ गई, पुत्र बिछड़ गए, पुत्रा नालों प्यारे सिंह बिछड़ गए, पर मेरे कलगियां वाले एक आवाजा दे रहे ने। बड़ा प्यारा इतिहास है, की कहते ने, दया सिया अमृत वेला हो गया है, आ कीर्तन करिए। थोड़े जिन्हें दुख आ जान ते झट देनी कह दिंदा है, मैं नितनेम छड़ देता है। सारा कुछ पानी रोड़ी जांदा, ये आवाजा दे रहे ने दया सिया बई, नितनेम दा टाइम हो गया है, आस्था जी दी वार दा कीर्तन करिए। ते प्यारे हो, सतगुरु महाराज साडी झोली विच पावन उपदेश पा रहे ने। ओए सिखा, तेरे गुरु ने ते एक दिन भी बाणी नहीं बसारी, जे तू कई कई दिन नित नेम ना करे, ना बाणी पढ़े, चिकादी गुरसिखी है। प्राचीन गुरसिखां दा जीवन पढ़िए, पता लगता है महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन विचों बहुत भारी जंग छिड़िया होया है। फौजदार ने सिपाही नू आखिया, जा गई अपनियां फौजां घट ने, किते दुश्मन दी जीतना हो जाए ते जाके महाराज जी नू आख फौजां भेजण। जदों सिपाही आया है ना, इधरों महाराजा रणजीत सिंह नितनेम विच बैठे ने, दीवान ने रोक लिया, ना बई तू अगे नहीं जा सकदा, बाणी पढ़ गए ने। सिपाही आखन लगा, बई बहुत जरूरी काम है, बई किन्ना भी जरूरी होवे, जिस वेले बाणी पढ़दे गाउंदे होण ओह किसे नूं नहीं मिलदे। बड़ा गुस्सा आया सिपाही नूं, इहने नूं नितनेम समाप्त होया। दरबान कहिंदा ए जा बई, सिपाही आखन लगा पहलां तेरी छुट्टी करावांगा, तेरी शिकायत लावांगा, मैनू अगे नहीं जान दिता। जदों सिपाही गया, सारी गल महाराजा रणजीत सिंह नू दसदा है, अपनियां फौजां थोड़ियां ने, दुश्मन दी फौज ज्यादी है, आ जेड़ा बाहर दीवान खलोता है ना, कहिंदा है बाणी पढ़ रहे ने, तू अगे नहीं जा सकदा, मैनू इन्हें अगे नहीं आण दिता। बड़े कीमती वचन महाराजा रणजीत सिंह ने आखे, की आखिया, ओए पलिया, जित किते फौजां ने कराणी, फौजां ते एक बहाना है, जित ते नितनेम ने कराणी है। जिहदे पल्ले नितनेम नहीं, जिहदे पल्ले बाणी नहीं, ओदी हर पासे हार है। आपां रोज कहिंदे हां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारिओ, जे खालसा वाहिगुरु दा नहीं रहेगा ते फतेह भी इहदी नहीं रहेगी। बच्चे तो लै के बुढ़े तक हर कोई गाउंदा है, पर जदों तू बाणी गाउंदा है ना,
ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬ ਗਾਵਤਾ ਹੈ।

0: क्या खूब गाता है, जैसे शब्द दे बोल सन उसे रंग में भाई साहब ने खूब गाया। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। तो हुक्म होया है 15 मिनट का बाकी समा है, सुदासरिया ने आप जी ने इस शब्द का कीर्तन सुनाना है। उस तो पहला मैं मेरा छोटा वीर भाई जगविंदर सिंह बैंस, जिसने दासरिया आप संगत के दर्शन करने वास्ते सदा दिता, वो महाराजा दलीप सिंह ट्रस्ट आप संगतान का धन्यवाद करने वास्ते आप जी के नाल बोल सांझे करेगा। किन्ने समय में असं अपना तबला शुरू कर लवेंगे, 15 मिनटों के अपना समाप्ति कर देवेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।
1: गुरु प्यारी सत्संग जीओ, गज बज के बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कोटान कोट धन्यवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हों का सदका आप इतने इकट्ठे बैठ के आत्मरस कीर्तन का आनंद मा रहे हो। 400 साल प्रकाश देश दिया समूह साध संगतान लख लख बधाई हो। इस मैं साडे सत्कार योग वीर रविंदर सिंह खहरा और भाई साहब भाई हरविंदर सिंह राणा, जिन्होंने इस प्रोग्राम नू अलीकिया, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मोढ़ा नू मोढ़ा ला के इस आत्मरस कीर्तन दरबार आप संगतां तक गंजबरी पार्क दे विखे आप संगतां वास्ते अलीकिया अते समूह महाराजा दलीप सिंह ट्रस्ट दे प्रबंधक वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हां के बहुत ही वधिया ढंग दे नाल प्रोग्राम अलीकिया ये समूह वीर अते महाराज दलीप सिंह ट्रस्ट दे प्रबंधक बधाई दे पात्र हन, जिन्हां ने आप दे संगतां वास्ते आत्मरस कीर्तन दरबार आप संगतां वास्ते प्रोग्राम अलीकिया। अंत विच फिर जो आने वाला समा जो आपां लड़ी चलाई गई सी आत्मरस कीर्तन दरबार की 15 अगस्त तो आप लंडन के शहर तो साडे अखीर प्रोग्राम जो इस तो बाद कल सिंह सभा गुरद्वारा साहब हैवलक रोड टाइम नोट कर लेना 2 to 5 PM तक कीर्तन होगा। तो उस तो बाद लंडन तो असी चल पावे वुल्वरहैम्पटन गुरु नानक गुरद्वारा साहब सहजी स्ट्रीट वुल्वरहैम्पटन, जिथे 1 तरीक न 400 साल प्रकाश दिवस असी वुल्वरहैम्पटन दी संगतां नाल मनावांगे। जिहड़ी संगतां उत्थे पहुंच सकन जरूर पहुंचो, जे नहीं तो जिथे भी थोड़े गुरु घर लागे पैंदे ने उत्थे जरूर गुरु महाराज दीआं हाजरियां भरो, गुरु घर रौनकां वधाओ और गुरु महाराज दीआं खुशियां प्राप्त करो। ज्यादा समा ना लैंदा होया होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा मैं भाई साहब नूं बेनती करांगा कि वह आप जी की सेवा शब्द कीर्तन करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: गुरु प्यारे सत संगीजनों, शब्द नूं जदों आपां ध्यान नाल पढ़ीए गौ नाल सुनीए तो बड़े उपदेश हन। मैं संखेप जी बेनती कर दिया। साहिब कहिंदे केवल भेख दे नाल धर्मी नहीं बन जाइदा, ज्ञानी नहीं बन जाइदा, योगी नहीं बन जाइदा। एक तां इह कि भेख तों बचना है। केवल भेख तुहानूं रब दा राह नहीं दिखाउंदा। दूसरा, सतगुरां ने उपदेश कीता है अंजन माहे निरंजन रहिए। इस माया दे संसार विच रहिंदियां होइआं किरत भी करनी, गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां भी निभाउणियां, तो उस मालक दी बंदगी नाल भी जुड़ना, घर बार नहीं छड्डना, किसी तरह का कोई कर्म कांड नहीं करना। सब तों वड्डी गल जो सतगुरां दा उपदेश है, जिस वर्गा होर किसी ग्रंथ विच शायद उपदेश नहीं शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब तों बिना, वह है सर्वसांझी वालता। एक दृष्ट कर संसार जाना, जोगी कहिए सोई, ज्ञानी वो है, जोगी वो है, विचारवान वो है, रब दे नेड़े वो है जिहड़ा सभनां दे विच परमात्मा नूं देखदा, हर जर्रे च देखदा है परमात्मा। तो गुरु प्यारो, सतगुरां ने एक होर वचन किया, कहिंदे मड़ियां मसाणां विच जाके भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुंदा। इस तों भी बचना है, शब्द नूं हिरदे वसाउणा है, शब्द रूप होना है, उस मालक की बंदगी विच जुड़ना है। इस तरह उस मालक दे नाल सांझ पैंदी है, उहदा ज्ञान प्राप्त हुंदा है। इत्थे ही कीर्तन की समाप्ति है। फुल्लां चुक्कां की खिमा, आप सब संगतां दा धन्नवाद, कोटान कोट शुकर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। अगला प्रोग्राम आप जी ने प्रबंधक दसते हैं। आत्मरस कीर्तन की इत्थे समाप्ति है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.